0: आप उसको कि मैं दो वर्ल्ड कप मैं ऐसा नहीं था कि नोरा की मुझे यकी है कि पायरंग समय रो आने का कि रोड़ों में नहीं आन चौना गए आसी हम चाहते हैं अरे आरा नगरी में पाते ब्लू शार्क्स असिस करो आप कि यौन पौधे तो आने की पे जस्ट उनका वन के वर एप्रिया जतावस इमुनी को नाकी एक उन्नत इंशीना निपोई एंड राउंड ऑफ 32 अरे आरा नगरी पाए इन्हें इनको हमें तक ऑनलाइन करने को बुला पे उनका ही आरा नगरी पे ना कोई यहाँ रोपोर और वाटर को जमने पाए इन्हें इन्हें कोनो नो यहाँ इन्हें इंशीना अरे पुदी संबियन द वर्ल्ड कप अरे मैं माइन तुम्हें ना खाने रसी हम केक वेर अरे इन्हें इन्हें कितना खाना था इन द वर्ल्ड कप आने अरे पुंत को एवोशिना इतना कुना कोई बीबीसी बा पुंत को उरे आया के अंदर ना मैं ऑफिस अंदर तैया आने में नहीं पकोया ये बोलता नाम वुमेन का नाइजीरिया अगर सही में तो यौन साउथ अफ्रीका इनका जितना ये और यार इनको रखो ताकत ना किया अगर पुंत सकी लोग का इन साउथ अफ्रीका इतना कुछ रोनों में जॉब सीखने देता कि मिसेन को पाइट यार ना एमएलए चार्ल्स मैं नाइजीरिया बा ये वाउन में और इमें अके एमएच इन्होंने तो ये ब्रिस्बेन इन्होंने सुन यूमिन का सका किया और ना कि ये रोनों Apunya ini kami tak kesuai kena kini kai. Adik sendiri ada satu bisnis Musa yang nana depan ni band. Jadi ini yo apa sesuai kena buat yang kaya tan gairi di South Africa. Ibu kini mesti ia kain Nigeria akan ni yang nanti ia. Itu pun harus Nigeria ni apa. Adik kita kangen akan yang kaya itu dikira kiri dia kini nana waris tahu saya. Ibu semua ini ia kain nanti mesti nana untuk orang ini ia yang South Africa. Yang kaya ibu bini mewah tengah mesti ia kain ada menapen dari kaki tapi ibu aki asal kau kaki. Nakutanya iron ni jatuh jaga. Amin temui sana pun isu bua kain Nigeria. Asal tadi mama saya kasi nana iron South Africa ni kau mekai jatuh jaga. Pa area ni kau metua anak cerdua. Ibu kini jatuh kau jatuh nana kau mesiran aku. Akhir ayak yes, anu pura aron kau ye iron South Africa. Ata kau tadi mama saya kan depa tanda kau mesiran aku South Africa. Ata kau ingkai makuri. Aun dek kanu anak kau ya men jatuh jaga. Aku akan jatuh kini dono men nara dulu kerja orang panan kiribes.
1: Yeyam kanga?
2: Niko, ayo lah cerau kanga.
1: Kita piyam.
2: Oh cerau yang niko.
1: Kaya kita nana services PPA.
2: Heng, ayare. Ibu kini kita rendang kanga. Lepas itu yakin nanom. Ah, data kita kon marketing@ppa.top.ky.
1: Ke message nak kon nana Facebook page PPA at Broadcasting and Publications Authority. Ke PPA Mary FM 89.9. Ke kuponi kon nana benda data kita kau rendah telefon number. Onua tenua akia. Tenua akia tuana ni mewa akia. Kini pun rogo nana counter PPA payri kini nikari nata ngitangi mkiam kanga. Ane nana suggestion box PPA. Are ekata Royan Ipukin.
3: Weapon!